हरि ओम। सभी भक्तों ने प्रसाद पाया भाई? सबने प्रसाद पा लिया? हाँ, तो प्रसाद ही बनाने की जो सेवा में लगे हुए हैं अपने गुरु भक्त, जो गुरुदेव भगवान के शिष्य श्री पृथ्वी सिंह जी और महेंद्र सिंह जी, वे हमेशा जो है भगवान की कृपा से सत्संग का लाभ तो कम लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो है क्या कहते हैं ना, भोजनामृत का, प्रसादी का लाभ देते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी भक्तगण आए हैं आप लोग प्रसाद लेकर के, आज की रात्रि तो कम से कम जब तक शरीर साथ दे तब तक क्या करिए, सत्संग का श्रवण करिए।

यही क्या कहलाता है? सत्संग। तो सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? आप सत्य मानते हो ना कोई चीज़ को, तो किसे कहते हैं सत्य? सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक समान रहती है, जो कभी बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं? सत्य। किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और वो बात बदल गई कि पहले तो आपने ऐसा कहा था, अब ऐसा हुआ नहीं, तो वो सत्य कहलाएगा? नहीं। जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। तो तीनों कालों में एक समान कौन रहता है? क्या आप, हम, जो सब दिख रहा है, झूपा है, ये शरीर है, ये मंदिर है, ये सत्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? है, ठीक है, दिख रहा है। लेकिन यह वास्तविक सत्य क्या है? देखो, आप स्वप्न देखते हैं, हाँ देखते हैं स्वप्न, तो स्वप्न देखते, स्वप्न में हाथी घोड़ा आया, बैठ करके गए बढ़िया से, सब देवता सामने आए, और जैसे ही नींद खुली तो स्वप्न टूट गया, तो फिर क्या कहते हैं? ये तो सत्य नहीं, सपना था। उसी प्रकार ये संसार भी क्या है? सपना है। कौन कह रहे हैं सपना है? मैं कह रहा हूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, भगवान शिव कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं?

जय जय राम। भगवान शिव कह रहे हैं, हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। भगवान शिव अपना अनुभव कह रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, भगवान का भजन, भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब ये तो जगत क्या है, सपना है। महाराज सपना कैसे हैं, कैसे सपना बताओ, सामने तो दिख रहा। महाराज सपना वो होता है जो हो दिखता पर होता नहीं है, पर यहाँ तो दिख भी रहा, हो भी रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ, सामने हम बोल रहे तो सत्य दिख रहे कि नहीं दिख रहे। लेकिन सपना कैसे हैं कि जैसे ही यह समय बीत जाएगा, कौन सा समय, जो समय चल रहा वर्तमान समय में, तो मैंने कहा तीनों कालों में, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीन काल होते हैं, तीन काल की सत्ता होती है। तो क्या यह तीनों कालों में है, क्या 100 वर्ष पहले आश्रम था, 100 वर्ष पहले हम लोग थे क्या यहाँ बताओ, 100 वर्ष पहले थे इस शरीर में, नहीं थे, तो भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में है, और आगे भी पता नहीं 100 वर्ष बाद रहोगे क्या। जो तीनों कालों में नहीं है वो क्या है, असत्य है, और जो तीनों कालों में भगवान पहले भी था, अभी भी भगवान है और आगे भी रहेगा। कहाँ भगवान, परमात्मा के जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, परमपिता परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। किसमें, संपूर्ण जगत में। एक प्रश्न भी उत्तर भी है, क्या है बोलो, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, और उत्तर भी यही है, कण कण में भगवान है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को सदैव स्मरण करते रहो, सदैव याद करते रहो, सदैव भजन करते रहो, तो महाराज बेड़ा पार है, नहीं तो इधर से उधर आर पार तो होना ही है। बोले दीपनारायण भगवान की। अब अपनी मधुर वाणी से पप्पू जी गर्ग आपको भजन सुनाएंगे। हमारे गुरु भक्त अशोक जी आप भी इधर आ जाएं, गणपत जी आप भी, और बैठ करके दिव्य प्रकार से भजनों का आनंद हम सबको प्राप्त कराए।

हरि ओम। माता जी लोग, आप लोग थोड़ा विराम करो, फिर बाद में सुबह फिर गाने का अवसर मिलेगा, ठीक है? अभी भजन मंडली आई हुई हैं, इनको भी थोड़ा अवसर दे देते हैं। तो अभी अशोक जी चौहान अपने सुमधुर कंठ से बाबजी के भजनों के द्वारा हम सबको आनंद प्राप्त कराएंगे। अशोक जी चौहान, आप हमारे गुरुकुल में संगीत के अध्यापक भी रहे हैं और बाबजी की कृपा से, माँ प्रभु जी की कृपा से आपने स्टेट लेवल तक भी संगीत के माध्यम से अपने प्रतिभा को जो है राजस्थान का नाम उजागर किया है, राजस्थान के नाम को जो है वहाँ तक लेके गए हैं। तो सब बाबजी की कृपा है। और यहाँ का इतिहास भी सुनाऊँ मैं आपको, तो यहाँ इस आश्रम में जब से मैं बालपन से अध्ययन कर रहा हूँ तब से अनेकों अध्यापक आए हैं और अनेकों अध्यापकों ने एक दो वर्ष इस आश्रम में निवास किया, रह करके सच्ची श्रद्धा से, ईमानदारी से पढ़ाया। और जिन लोगों ने बाबजी पर विश्वास किया, आस्था रखी, ऐसे 50-60 अध्यापक टीचर्स मैं जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट में जॉब लगी, ये सब बाबजी की ही कृपा है। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था विश्वास है, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा आपकी सुनता है और आपके मनोरथ को पूर्ण करता है। तो उसमें से हमारे आदरणीय गणपत जी, आप भी जो है बहुत वर्षों तक आपने अध्ययन कराया और अभी वर्तमान में आप जो है सरकारी में जो है अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सुंदर प्रकार से केमिस्ट्री इत्यादि का अध्ययन कराते हैं। तो बाबूजी की कृपा बरसती हैं, बस लेने वाला चाहिए। परमात्मा तो क्या करता है, वर्षा करता है। अब आपके पास कितना सामर्थ्य है, लोटा लेके जाओगे तो महाराज लोटा भरोगे, थाली लेके जाओगे थाली, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी। तो इस प्रकार परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। तो आइए हम लोग सुनते हैं अशोक जी चौहान को।

सयुक्तं मनित्यदायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेवों कराय नमो नमः गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा।

0: मन चोर, मन के मते मत चालिए, घड़ी पलक मन और, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, घड़ी पलक मन और। माइंड इज ए ग्रीडी, मन लोभी मन लालची, माइंड इज ए फुल ऑफ द डिजायर्स, मन चंचल, माइंड इज रेस्टलेस, एंड मन चंचल मन चोर, एंड माइंड इज ऑल्सो द थीफ, नो चोरी कर ही देता है। भगवान कृष्ण भी उसको नहीं रोक सकता है चोरी करने में, मन मक्खन चोर देता है। पता है भगवान को कि मक्खन चोरी कर दिया और हमारी मैया को जाकर के वो सभी शिकायत करेंगी। तो मन चंचल मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, डोंट फॉलो योर माइंड, क्योंकि माइंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। दैट्स इट। व्हाट इज अ माइंड? मन का देवता चंद्र, दैट्स वाई बिसाइड मी हरिश्चंद्रपुरी जी महाराज। देखिए वो हमारे देवता है, ही इज कंट्रोलिंग। इसीलिए तो ऐसे महान पुरुष पास में बैठते हैं तो हमारे को सावधानी से बोलना पड़ता है। एवरीथिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ द माइंड इज द मून, एंड मून इज एवरी डे व्हेन मून कम्स आउट और मून राइजेस नेवर इक्वल। चंद्र हमेशा एक सरी का नहीं आता है, घटता बढ़ता रहता है। वैसे मन जो है संकल्प विकल्प करता रहता है, यही मन का धर्म है, क्योंकि मन चंद्र से मिला हुआ है। एंड मून मीन्स इमोशन, इन मोशन, यू आर ऑल द टाइम्स इन द मोशन, इमोशन, एंड इमोशन मीन्स वाटर। सो चंद्र जो है पानी का प्रतीक है, और वो जल जो है पानी वाटर, वो वाटर इज चंचल मूविंग, देर आर द वेव, सो यू आर इन द मोशन इज द इमोशन। बट वॉट काइंड ऑफ मोशन यू हैव, समटाइम इज ए हॉरिकन, अरे वाह फ्लड, राजा योगी अग्नि जल, जिसकी उल्टी रीत, राजा योगी अग्नि जल जिसकी उल्टी रीत। सावधान से परशुराम जी कह रहे हैं कि थोड़ी देखे प्रीत, इनसे आप ज्यादा दोस्ती मत करना। राजा भी ठीक है, कभी होते होते वो लगा देता लात। हाँ वो नेता होता है ना, नेता तो टिकट की समय तो आएंगे, हाँ बाबूजी कैसे हो, भाई साहब कैसे हो, ऐसे सब है। जीत गया उसके बाद तो हाथ नहीं मिला था या टेलीफोन भी नहीं मिला था। ये बातें होती है माइंड। नाउ व्हाट इज द माइंड? सो माइंड हमारा जो है, माइंड इज लाइक ए कैमरा, इज गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफरिंग टू द सबकॉन्शियस। एंड व्हाट इज द हिडन रिटन इन द सबकॉन्शियस ब्रिंग्स अप एंड गिव्स टू द कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्ट, बुद्धि। एंड व्हाट इज ए बुद्धि? बुद्धि का धर्म क्या है? बुद्धि का धर्म है उसका जजमेंट देना। सो इंटेलेक्ट गिव्स द जजमेंट एंड माइंड ब्रिंग्स एंड गोज, देयरफॉर माइंड हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। He's only coming and going, coming and going, coming and going. So that is a mind. Intellect is giving judgment, but viveka, that is which leads us further. So yoga, asanas, pranayam, chakras, muladhara, swadhisthan, manipur, anahat, visuddhi, agya, bindu, or sahasrar. These are the 8 chakras, which is very important in our body. So yoga, anant hai. Anant hari katha. Saath mein aata hai asan. Asan, pranayam, dhyan, dharana. To asan kai prakar ke asan kehlate hain. Ye Maharaj Shri ka jo ये गद्दी बिछी हुई है इसको भी आसन ही कहते हैं महाराज जी आप के आसन पे बैठिए वो भी आसन है आपका आसन कहां लगेगा रात को सहन कहां करोगे वो भी आसन है और पोस्चर्स जो है वो भी आसन है आसन की परिभाषा बहुत कुछ है लेकिन मेडिटेशन करते समय काया स्थैर्यम मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी motionlessness of the body, फिर meditation होता है, ये गिलास पड़ी है, गिलास के अंदर पानी है, गिलास स्थिर है, पानी भी स्थिर है, गिलास is motionless, the liquid inside is also motionless, but as soon as I take, glass is moving, liquid is moving, similarly, if our body is comfortable and motionless, our mind is also steady. Sankalp Biklap ke andar mein dhire dhire dhire dhire dhire dhire aata jata hai, phir man meditation ho jata hai. So that's a long way. Asana. Ab aapko thoda sa bata dunga, nahi to Swami ji kahenge Baba ji ko mic diya aur pata nahi kab tak pakde rahenge. So अब बस हो गया पूरा धीरे से आपको कुछ बताता हूं सभी बैठे हैं अरे आए तो खाली बातें करने से कोई भूख थोड़ी मिलती है मिटती है भूख मिटते क्या बातों से भूख नहीं मिटती है बात करने से पेट नहीं भरता है टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग कंपेयर्ड विद द ग्रेम ऑफ प्रैक्टिस तो खाली बातें करते जाओ पेट नहीं भरेगा अरे कुछ खाने को तो दे एक भी चना दे दो तो कम वो पेट में जाएगा तो कम से कम वो तो थोड़ा काम करेगा ही भूखे को बताते जाओ कि हां श्रीखंड आ रहा है ओहो हलवा आ रहा है पूड़ी आ रही है और क्या आ रहा है अरे समोसे आ रहे हैं लड्डू आ रहे हैं अरे जलेबी भी बन रही है वो भूखे के बेचारे के पेट के अंदर में आवाज हो रही है बादल की तरह लेकिन आया क्या कुछ नहीं आया डपोट संघ का नाम सुना आपने आप लोगों ने डपोट संघ का नाम सुना महाराज जी आपने सुना
1: नहीं अभी तक नहीं सुना
0: सुना दूं हां देखिए ये भी तो बात है हमारे मारवाड़ में गुजरात में हिंदुस्तान में कहते हैं डपोल संघ कावद है कि नहीं तो डपोल संघ की बात कर देता हूं फिर आपको फिर प्रैक्टिकल दे दूंगा ठीक है एक आई एम टेलिंग इन हिंदी ओके सो दैट आफ्टर यू विल आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम सो टू क्रॉस आई विल मेक समथिंग कमेंट्री वेरी क्विकली सो यू विल अंडरस्टैंड एक गरीब आदमी था गरीब था काम तो करता है लेकिन पैसे इतना नहीं मिलता है तो उसकी पत्नी को उसने कहा कि आप ऐसा करो यहां जो कुछ ये पैसे देता हूं काम करना मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान मेरे को बहुत कुछ पैसे दे देंगे समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का प्रार्थना कर रहा है ओम नमः शिवाय, भगवान शिव जी तो भोलेनाथ है ना, सबसे जल्दी वरदान कौन देता है? शिव ना।

ओह शंकर भगवान प्रकट हो गए जल के अंदर। बोलो भक्त क्या चाहिए, कि आप अगर शिव जी हैं तो आप अंतर्जामी सब कुछ जानते, मेरे को क्या कहते हो कि क्या चाहिए। प्रभु दे दीजिए, मैं लेने के लिए आया हूं और आप देने के लिए प्रकट हुए हो। अच्छा भक्त, तू मेरा भक्त है, ये शंख लेके आया हूं, ये शंख इतना चमत्कारिक है। ओहो प्रभु प्रभु प्रभु, हे दीनदयाल क्या कहना है, आपकी माया, शंकर भगवान महादेव की माया है ये, क्या करेगा ये। अरे भगत, इस शंख की पूजा करना, गंगा जल से धो लेना या पानी से, कुएं का पानी से धो लेना, और अगरबत्ती लगाना, फूल पुष्प चढ़ाना, और फिर कहना कि हे शंकरदेव मेरे को 1000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो तुरंत 1000 रुपये का नोट आ जाएगा। हे शंकरदेव मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है, तो हमारे सभी के लिए बना बनाया कैटरिंग आ जाए, जैसे आ जाएगा। तो कहा कि हाँ वो आ जाएगा, कि हे प्रभु कृपा कर दी, कपड़े भी मंगा देंगे, सोना दागिना भी मिला, सब जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा बेटा। बस प्रभु यही चाहता था। भगवान शिव अदृश्य हो गए, और क्या हुआ कि वहां वो शंख लेकर के गांव की तरफ, घर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते 4-5 दिन के बाद, आइए 4-5 दिन के बाद में कोई गांव आया, उसके बाद दोस्त था, अच्छा दोस्त था, मित्र। भाई देखो, कभी परीक्षा जब भी होती है कि मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं। हमारे ग्रंथों में कहा है धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोंचारी, धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोंचारी। अरे मित्र की परीक्षा जब होती है, नारी की परीक्षा जब होती है, धीरज की परीक्षा जब होती है, कि हम किसी न किसी संकट में है, तो दोस्त के वहां गया। तो दोस्त क्या करे, भाई बहुत समय से आए, क्या बात है, कहाँ चले गए थे, कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान शिव मिल गए। अच्छा शंकर दादा मर गया क्या? हाँ मर गया बापू, तो सु गया शंकर दादा ने, सु कही है लाडवा खवाड़े शंकर दादा बहू। अच्छा अरे ऐसे ही है, देवी देवता क्या करते हैं, देंगे हैं क्या? अरे शंख दिया है कि बताओ। हे शंख भगवान, हमारे मित्र के घर के अंदर सभी मिलकर के 8 और मैं 9, सभी के लिए अच्छा बढ़िया ताजा स्वप्न भोग थाल में पुरसा हुआ लेके भिजवा दीजिए। आ गया। अरे वाह, कपड़े मंगा दिए, आ गए। 50,000 मेरे मित्र को देना चाहता हूं, आ गए। मित्र कहता कि हाँ भाई ये तो चमत्कारिक चीज आ गई। भोजन किया, सो गए। अब वो रात को नींद नहीं आ रही, किसको? मित्र को, कि मैं कैसे करके उस शंख को मैं ले लूं। गया दूसरे दोस्त के पास, कहीं रात को दुकान पे गया और एक इतनी साइज का एक शंख लेके आ गया। आकर के वो थका थका था वो भगत, तो क्या किया उसने कि उसकी थैली में से वो असली शंख

उसको तो निकाल दिया और वो जो नकली से लेके आया उसको उसके झोली में डाल दिया 10-20 घर का। वहां शंकर भगवान के दिया हुआ शंख को वहां टेबल पे रख करके पूजा करी। हे शंख भगवान, हमारे भाई बहन जितने सभी खड़े मेरे गांव के सभी को पहले भोजन करा दो। कुछ नहीं, अरे शंख भगवान कराओ ना, क्या कराए। और वो इतना निराश हो गया, वहीं से शंख को लेकर के गया समुद्र के किनारे और शंकर भगवान को कहा, ये तेरा शंख मुझे नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, अरे मेरा भगत, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, भगवान नहीं चाहता कि भगत दुखी हो। शंकर भगवान प्रकट हुए, वापस बोला, हे भगवान भगत, क्या मुझे नहीं चाहिए आपका शंख। अरे बेटा, तेरा शंख वो चुरा गया तेरा दोस्त, असली उसके पास है, नकली अंदर डाल दिया। तो मैं क्या करूं अब, क्या करे, क्या मैं दूसरा शंख देता हूं। अरे वो क्या करता है शंख, अरे उसमें तो चमत्कार डबल है बेटा। कि वो क्या है भगवान, कि मांगना 1,000 रुपया तो वो कहे 1,000 से क्या 1 करोड़ ले लो ना, अभी बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, लेके जाओ, लेकिन सावधान, देता कुछ नहीं है, वो केवल बोलता है। शंख बोलता है 1,000 रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये ले लो, 1 ड्रेस की जगह वो कहता 10 ड्रेस ले लो। के लाओ देओ, कि क्या धक्का दे, धक्का को समझते हो, किसी को धक्का देना ना। अरे तू क्या नहीं दे रहा है, कि नहीं मेरा नाम है डपोल शंख। अब वो लेके गया वापस दोस्त के पास, गया रात्रि विश्राम किया। अरे दोस्त का कैसे आ गया इतना जल्दी, बोला कि भाई इस बार तो एक चमत्कारिक चीज और मिल गई। अरे वो क्या है, अरे मांगे 1 और दे अनेक। किया ऐसे कैसे हो सकता, कि देखिए हे शंख भगवान, आज हमारे घर के अंदर 10 किलो सोना आ जाए। तो भगवान शंखदेव कहते, अच्छा भक्त आशीर्वाद है, लेकिन 10 किलो से क्या होगा, 1 टन सोना ले लेना, ले जाओ 10 सोना आ जाएगा। कि बस बस बस बस इतना ही चाहता था भगवान, उसको दे दिया। अब वो कहता कि ये शंख बढ़िया है। दूसरी दुकान पे गया लेने के लिए, तो बोला कि भाई अब तो कोई शंख है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि जो वो दूसरा पुराने वाला शंख था उसको तो उसकी झोली में डाल दिया और ये नकली शंख आया वो उसको दे दिया। अब दूसरे दिन वो तो चला गया। दोस्त ने कहा, हे शंख भगवान, मुझे 10 किलो सोना चाहिए। क्या 10 किलो के 1 टन ले दे भाई, कि हाँ दीजिए, कि क्या धक्का दूं। अरे ये क्या है, कि ये क्या, मेरा तो यही काम है मुंह से बोलना, देना नहीं है। तो कहा कि तेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम है डपोल शंख। तो तब से डपोल शंख बना, खाली खुली खुली बातें करता है, वो कुछ नहीं करता है। क्या कहो जी, तो डपोल शंख जो था आ गया चला गया। तो इस प्रकार से धर्म धीरज मित्र और नारी आपतकाल प्रकहियों चारी। तो जो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला है, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में आपके जोड़ा हुआ है, ये सब उस समय उनकी परीक्षा होती है, नहीं तो परीक्षा नहीं होती है। साथ ही साथ अब छोटा सा योग का अभ्यास करा देते हैं, ठीक है ना, कराऊंगा जरूर। वो मैं डपोल शंख वाली बात नहीं करूंगा अब। ऑलराइट, सो वन पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ, यू स्टे एट होम, आई गो समवेयर एंड डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड गॉड विल गिव मी समथिंग, वट एवर आई विल आस्क गॉड विल गिव एंड आई विल कम एंड बैक। सो he went to the beach, was sitting near the ocean, and he was singing Shiva's name, Namo Shivaya, Namo Shivaya, Shiva.

Exhale. Inhale and look up to the ceiling. Exhale. Now inhale and stretch your hand sidewards. And above the head. Exhale in the front, hands down. One, inhale. Exhale. Yaad rakhna. बोलना मत. श्वास लीजिए एक और दो. दूसरा था एक और दो. अब अंगुलियों को कंधे पर रखिए यहां और कोहनियों को ऐसे जोड़ दीजिए और इसको रोटेशन करिए. घुमाए एक, श्वास लीजिए ऊपर कंठ और श्वास छोड़िए.

0: और दूसरी तरफ अब इधर ऊपर से नीचे द सोल्डर ब्लेड शुड टच वेरी गुड बस हैंड्स डाउन तो ये दस दस बार करना है दस बार ऐसे और दस बार ऐसे अब धीरे धीरे ऊपर देखिए श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने ठुड्डी को सीना पे लगाइए टच योर एंड कम अप टच द चिन टू द चेस्ट And inhale up. Good. 10 times. Swas lena, sir ko dekhi upar, aur swas chhodte hue, Jalandhar band. Akashi mudra, aur Jalandhar band. Bahut acha, bahut hi acha. Ab पैर जो लंबे किए हुए हैं कुर्सी पे बैठे थोड़ा पैर और ऊपर लंबा कर दो और अपने पैरों के अंगूठे और अंगुलियों से इनको ऐसा पकड़ने की कोशिश करो रूमाल को कॉन्ट्रैक्ट योर टोज एंड रिलैक्स द टोज स्लोली कॉन्ट्रैक्ट द टोज एंड ये इसमें बहुत सर्कुलेशन हो रहा है पैरों के किसी लोगों को एडी में दर्द हो रहा है पैरों में दर्द हो रहा है ये सब चला जाएगा दर्द भग जाएगा कहीं एक दो वन अंगूठा पकड़ो अंगुली पकड़ो सब टू वन अब एक स्ट्रेच योर टोज टूवर्ड्स द फ्लोर इन द फ्रंट ऑफ यू एंड इनहेल एक्सहेल एंड इनहेल इसको भी 10 बार इसके बाद पैर अलग अलग और अंगूठों को पैरों के अंगूठों को जोड़ दीजिए अब इस एक सर्कल बनाइए वन टू थ्री फोर फाइव Other direction, one, two, three, four, five. बहुत अच्छा पैर पैरों को जोड़ दीजिए और धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए एक और धीरे धीरे आगे झुकिए जितना झुक सके अंगूठे पकड़िए पैरों के जितना जा सके और इनहेल श्वास लेते हुए वापस ऊपर और हाथ दोनों नीचे एक श्वास लीजिए दो श्वास निकालिए तीन श्वास लीजिए ऊपर चार श्वास जोड़िए और अब पीछे झुकते हुए मुट्ठी बांधिए जैसे नैया को नाव को चलाते हैं ना एक दो, चार, स्लोली पांच। अब हथेलियों को ऊपर रखिए, द पाम्स फेसिंग अपवर्ड, हैंड्स नियर द नीज। जो एक मुट्ठी बांधिए, खोलिए, दो, यस, नाव को चलाते रहिए, क्योंकि अपने गणपति बापू मौर्या इनको बस समुद्र के अंदर में स्नान कराना है, जल समाधि हो गया बस। हरिओम। जितना धीरे करेंगे उतना फायदा ज्यादा रहेगा। उसका एक उदाहरण बताता हूं। आप का हाथ ऐसे पकड़िए, देखिए अपने हाथ को, देखिए रेखा, देखिए कितनी सुंदर है, वाह। अरे महाराज जी, इसमें तो पैसे पैसे लिखे हुए हैं उनकी रेखा में। अरे वाह। अब इसको बंद करें और खोले, मुट्ठी को बंद करें और खोले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आया। भाई देखो, खाने का बढ़िया हो तो मजा आता, खाने का नहीं तो ठीक है, जंक फूड है, पेट पेट में डालते। क्वालिटी भोजन का वो है, जितना चबाओगे उतना स्वादिष्ट लगेगा, और जंक फूड वो है, जितना चबाओगे तो उल्टी होने लगेगी। इसलिए मुंह कहता जल्दी पेट में डाल दे तू। तो अब ऐसा नहीं कि हाथ को लुप्टिया पान, सीधा बैठो ही, हाँ, नाउ स्लोली क्लोज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, पकड़ दो उसको, होल्ड योर फिस्ट स्ट्रांग एंड विद राइट हैंड होल्ड द रिस्ट, ओके, टाइट द रिस्ट, हाथ पकड़ा हुआ है, स्टे लाइक दिस, एंड नाउ ओनली ओपन द पाम द लेफ्ट हैंड एंड लुक टू योर पाम एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, बट राइट हैंड इज होल्डिंग योर रिस्ट। देखिए आपका हाथ बिल्कुल लुक्स लाइक ए पेल। अब देखिए हाथ को और देखिए, अंगुलियों को देखिए, लुक योर फिंगर्स, लुक योर पाम्स, एंड नाउ रिलीज योर राइट हैंड एंड लुक टू पाम, व्हाट्स हैपनिंग? फर्क पड़ा? अब इस हाथ को और इस हाथ को देखो, कितना फर्क है भाई। अब देखते हैं, इसको भी करें नहीं तो ये भी तो नाराज हो जाएगा, रात भर कहेगा कि इसी को क्यों आपने। तो इसको भी ऐसा करके मुट्ठी को बांधिए टाइट, और लेफ्ट हैंड से पकड़ देते हैं हमारे ये हाथ, इसको कलाई को पकड़ लीजिए, रिस्ट को पकड़ लीजिए, स्ट्राइट वेरी टाइट एंड ओपन द पाम एंड लुक टू योर हैंड। बहुत अच्छी रेखा है, भाग्यशाली हो, लंबी उम्र है, पैसे खूब लिखे हुए हैं, लेकिन लिखे हुए कहाँ है, उसको यहां तो लाओ। हाँ, अब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाम्स एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, एंड नाउ व्हेन आई से थ्री वन देन यू विल रिलीज, थ्री टू वन, हाथ को ढीला छोड़ दो, लाल और लाल इसी में है माल। सो देखिए अब आपके हाथ जो है कितने अच्छे लग रहे हैं। ठंडी में कार को चलाने से पहले हाथों को ऐसा ऐसा कर दीजिए तो गर्म हो जाएगा। यस डू इट लाइक दिस, जो ऐसा करोगे तो क्या था आपके हाथों के अंदर में चमत्कार बता देता हूँ। चमत्कार बता दे वहां क्या आएगी तो महाराज जी थोड़ा बहुत चमत्कार करें। ठीक है चमत्कार को
1: नमस्कार।
0: चलो अब थोड़ा चमत्कार देख लेते हैं। हाथों नाउ मिरेकल, नाउ यू विल हैव ए मिरेकल। यू कैन सिट स्ट्रेट इफ यू वॉन्ट, सिट इन योगा पोस्चर, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, एनी आसन वेर यू फील कंफर्टेबल। अब ये दोनों हाथ जो हमारे हैं, लुक बोथ पाम्स, हाँ दोनों हथेलियों के अंदर में थोड़ी रेखा अलग अलग है। अच्छा एक तरफ तो धन आता है लेकिन दूसरी तरफ वो चला जाता है। अरे हाँ वो तो जाना चाहिए, लक्ष्मी चंचल है। पानी तो चलता भला पड़ा गंदेला होए। वाह वही वाह। अब ऐसे करिए हाथों को, अब आपके अंगुलियों के ऑन योर टिप ऑफ द फिंगर्स समथिंग इज टिकलिंग, जस्ट लुक लाइक दैट। नाउ आई वॉन्ट that you have 1000 times more tickling or like a needles going through your palms, that we should fold your hands. Fold your hands. And now rub the palms

गुड अब ऐसे वन इंच दूर रखो। अब ऐसा करिए, नीडल मूव हो गई नहीं कि नहीं, ऐसा कर रहे हो तो भी कि जैसे सुई नीचे लगी हुई है, और ऐसा करिए धीरे धीरे। वो प्रेशर आता है ना, मैग्नेट। और अब क्लोज योर फिस्ट, हैंड्स डाउन एंड कम अगेन अप एंड ओपन पाम। देयर इज नो मैग्नेट, वेज गॉन। सो दिस मीन्स हमारे हाथों का ठंडी वगैरह होती है तो गर्म कर सकते हैं, और अंगुली वगैरह सभी दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज दी बेस्ट है। कहीं पेट में या कंधे पे या कहीं दर्द हो रहा है तो इस सेल्फ हीलिंग पावर करके हम यहाँ रख दें तो हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, या कहीं दर्द है तो वो हम हमारी एनर्जी को वापस वहां भेजते हैं। तो इनहेल एंड यू गो इन विद द एनर्जी, एक्सहेल and take all the toxins and the pain out, self healing. To bas aaj to itna hi, that's all for today. Session is over, it was 1.5 hours.

0: मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा हरि ओम।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव की जय।

हलक पुरुज महादेव, देवादि देव देवेश्वर महादेव, दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, सत्य सनातन धर्म, ओम शांति शांति शांति।

अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, लालानंद जी महाराज की, शिवानंद जी महाराज की, बोधानंद जी महाराज की, ब्रह्मानंद जी महाराज की और सभी महापुरुषों की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इट इज ग्रेट opportunities for us to

0: महाठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिया कर डोले, द रोप हैव इन हैंड टू हैंग यू अप, बट टिल दैट सी हैव वेरी स्वीट लैंग्वेज, वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, हाउ टू कैच यू, एंड देन यू आर होल्डिंग लाइक दिस स्नेक इन योर हैंड्स। सो दिस माया, दिस संसारास, देयरफॉर इट इज सेड पतन और उथन, दो बोथ हैज बीन सॉन। सो भगवान विष्णु सेड, लक्ष्मी देवी गॉडेस, लेट्स गो बैक टू अवर वैकुंठा, दैट इज मच बेटर, सम टाइम टू टाइम नो नारदा कम्स, दैट्स ऑल। एंड सो केम देयर एंड दे वेंट, सो बट बोथ वन सीड, सो द रूट्स आर इन वन, बट वाट इज प्राउड केम आउट, वन इज दिस एंड दैट। सो वाट इज दैट वन? One is called Sangha. Sangha means the company. Now, which kind of company you have? Negative way or spiritual positive way? Now, this is called only one word, Sangha. Now in the one word, one letter, Sang. Now before Sang, if you write Sat, what becomes? Satsang. And if instead of the Sat you write Ku, what happens? Kusanga, bad societies. So root is there, but how now the branches will develop, this side or that side? So in the Kali Yuga is a very, very hard, difficult to get good Sangha. There is a lot of sweet words, there are a lot of tricks, but at end there will be nothing. So this one bhajan was Mahaprabhuji's, then I will not translate all, otherwise morning I have to serve you breakfast here.
1: And you miss your plane.
0: So therefore, sir.

सत्संग ओ सजन वाली लागे ओ सदाई सत्संग। ओ माय डियर वन, ओ माय फ्रेंड्स, आई लव सत्संग। श्रुति और स्मृति गावे, श्रुति व्हाट इज स्पोकन, स्मृति व्हाट इज इन मेमोरी। दिस इज फ्रॉम वेदास, श्रुति स्मृति। श्रोता श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय, दिस मेनी डेफिनेशन आई विल टेल यू आफ्टर। सुख बैंकुंठ स्वर्ग नहीं दुर्लभ, दुर्लभ है सत्संग। सुख बैंकुंठ स्वर्ग।

श्री अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय।

श्रीदेव नारायण भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, सत गुरुदेव की जय।

श्री प्रणाम भगवान की जय। श्री शिव शंकरदेव परम स्वामी अश्विन गुरुदेव की जय। जुग जुग जीवो महेश्वर नंद जी।

बिंदुसयुक्तम नित्यदायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।

अनंत ब्रह्मांड की रचयिता, सृष्टि के पालन करता, घट घट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। परम श्रद्धेय परम आदरणीय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय हमारे घनिष्ठ मित्रों में हमारे घनिष्ठ प्रिय गुरु भाई और हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्री हरिचंद्र जी महाराज

0: दिस आर द थ्री लेवल्स ऑफ द कॉन्शियसनेस. हम जागृत हैं अभी, जागृत, वी आर अवेकन एंड वी सी व्हाट इज हैपनिंग हियर लेफ्ट एंड राइट, बट देन वी गो टू द स्लीप. नाउ स्लीपिंग, इट्स नॉट इजी टू नो योर स्लीप. क्या आपको पता है कि आप जागृत अवस्था से सुसुप्त अवस्था में किस घड़ी, किस सेकेंड में आप बॉर्डर को क्रॉस किया है? फ्रॉम विच सेकेंड हाउ डिड यू केम टू द स्लीपिंग लेवल? यू वेर अवेकन एंड हाउ डिड यू स्मूथली enter into the sleep? If you can research this and become aware about that, how you are sleeping, that second, ये तो second की बात है. They said, the driver said, micro sleep. Micro sleep से accident होता है ना, थोड़ी सी आंख की जोखा आया और एक्सीडेंट हो गया. सो इट इज फ्रॉम अवेकन टू द स्लीप. जस्ट वी गो इन द बेड, पुट अवर हेड ऑन द पिलो एंड सेड नाउ आई विल स्लीप. बट व्हेन डिड यू कम टू द स्लीप? दिस इज द वर्क ऑफ द योगी. अच्छा, ओके, दो दिन मैटर, आप आ गए, गहरी निंद्रा के अंदर हैं आप. सडनली यू आर इन शिकागो फ्रॉम न्यूयॉर्क. ड्रीम, स्वप्न. सो हाउ डिड यू वेंट आउट ऑफ दिस फिजिकल बॉडी थ्रू द एस्ट्रल बॉडी? यू आर इन द शिकागो इन द टेम्पल, ब्यूटिफुल न्यू टेम्पल, एंड यू आर डूइंग आरती एंड एक्सेट्रा. स्वप्न, हाउ डिड यू वेंट दिस? हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर कैसे निकला और कहां चला गया, किस स्पीड से गया, कहां तो शिकागो और कहां न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के अंदर में भी क्वींस, और क्वींस के अंदर भी शिव शक्ति मंदिर, और शिव शक्ति मंदिर के अंदर भी ऐसे देवता, बड़े महापुरुष, ईश्वरीय विभूति, हमारे हरिश्चंद्रपुरी जी महाराज और आशीर्वाद दे रहे सभी को. पाटी जी, देखिए मिराकल्स. बट नाउ यू आर इन शिकागो. कैसे गए? हाउ, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू टुक? अब क्या होता है कि मच्छर काटता है, सडनली मस्किटो बाइट्स यू, यू वेक अप विद इन नो टाइम. शिकागो से यहां किस स्पीड से आप आए और जागृत हो गए, स्वप्न से जागृत. सो योगा, समाधि, गेटिंग ए higher consciousness in samadhi, first you have to mastery, awaken, sleep and dream. Jagrata, sushupta and swapna. Swapna. Swapna kya hai? Swapna is our reality. The dream is our reality. It is that reality which we cannot realize, and we dream and we try to fulfill our desires through the dream. Yes, Kamlesh ji, sahi baat hai na? Ab kya hota hai ki wo sajan jisko ice cream khana tha raat ko aa gaya swapna zor se. Oh, maharaj, kya kehna hai? इतना बड़ा कटोरा भरा हुआ आइसक्रीम जिसमें पिंक है, येलो है, व्हाइट है, छोटे छोटे लड्डू की तरह. सो Now he's dreaming in the night. His wife said in him in the dream, "Darling," said, "now you are healthy, let's go and have ice cream." He said, "Oh, my dear, thank you. I will pay you today ice cream." She said, let's go. He is dreaming. Now they went to the shop. They sit there on table chair and order the ice cream. Bowl, very big, beautiful bowl. Can you imagine, children? Ice cream. And very nice spoon. Silver spoon. That's a very expensive shop. And now, wife said, "Enjoy." "What?" "Enjoy. My dear, the joy which you want to enjoy, that joy is not that enjoy. The joy of that enjoy is less than the sorrow of that joy." So the enjoy which you want from the joy of the enjoy is less than the sorrows of the joy. Now he takes the spoon, ice cream, and the spoon comes near the lips. And what happened? Alarm baj gaya. Hari Om. Now, in the dream, ice cream comes close to his lips and alarm ringing. Kya ho gaya? What happened? Woke up. Dream is gone. Now, what happens? He is so disappointed. And wife is sleeping, snoring. Oh, Ram, Ram, Ram. Now, when even in the dream you could not fulfill your desire, you wake up, this is a more painful, more disappointment. We disappoint. What happens? That desire which we could not fulfill even in our dream, it goes to the subconscious. And it dwells in subconscious for a long time. Again, you try to eat ice cream, but you cannot. Again, you got a cold, and you are a good singer, and your master who is teaching you singing, he said, "No, for your vocal cord is not good to eat ice cream." Oh, God, again. So, slowly, slowly, what happens? That desire comes through the dreams and goes back and comes. It went to the unconscious level. Now, husband, he loves his wife, but suddenly something happened. He can't go with her shopping. And whenever they go outside together, they are quarreling and comes back home. So what happens? They go to the psychiatric doctor. And what doctor said? "Oh, you are, he's a psychic." Both husband and wife comes at home, looking in the mirror. "I'm psychic. I'm psychic." Yes. Doctor is right. When doctor don't know exactly what is the cause in this, then is very easy to say it is a psychic. When the bhakta comes to Guruji and tell Guruji, "I have this samasya, this problem and this problem," to Guruji kahenge, "Ha, acha hai, but it is your karma." Wo karma pe dal dete hai. Hari Om. How to get a chuti to psychic? What is a psychic? Psychic is that kind of emotion which you could not fulfill, and it is in your unconscious level, and now that has lost the form. If you know What is the cause or reason? You can solve your problem. There will be no psychic problem more. So they went to the psychiatric treatment, to psychologist, and they were analyzing every day, coming once a week, one day, and they were asking what you did and what you did not, and this and this. And one day, one point came, and that point came about ice cream. And his wife said, yes, I prohibited my husband few times not to eat ice cream. Do you remember? He said, yes. Yes, you didn't give me ice cream. Yes, he was dreaming. He said, yes, I was dreaming. Then the psychologist said, okay, finish today's our talk is finished. I would like to go with you for a little bit in the market. Let's go. And he lead them to the ice cream shop and sit there, and all three of them said, let's enjoy the ice. They ate the ice, and he was so happy, no anymore depression. So this is our mind. Therefore, yoga is that kind of science of the body, mind, and consciousness. So the mind. So Kundalini, Ida, Pingala, Sushumna, and the fourth one is called Vajranadi. Vajranadi begins from the small and big toe. Vajranadi controls our immunity in the body. Vajranadi controls our Ida, Pingala, Sushumna. Vajranadi controls our heart, that we don't get a heart attack, and also brain hemorrhage. Vajranadi begins from the big toe and second toe, and it goes through and is supporting the Sushumna Nadi. Like when we build a building and we have earthing cable. So Vajranadi is like an earthing, so there is no any bad things, attack happens to our body or mind. And therefore, you have to practice those certain postures of yoga that you can avoid such accidents. Mind. Let's come to the man. Man kya hai? Man lobhi, man lalchi, man chanchal. Man chor. Man ke mate mat chaliye, ghadi palak, man on. Man lobhi, man lalchi, man chanchal, man chor. Man ke mate na chaliye, ghadi palak, man on. Mind is a greedy. Man lobhi, man lalchi. Mind is full of the desires. Man chanchal, mind is restless. And man chanchal, man chor, and mind is also the thief. No? Chori kari deta hai. Bhagwan Krishna bhi usko nahi rok sakta hai, chori karne mein man makhan chor deta hai. पता है भगवान को कि मक्खन चोरी कर दिया और हमारी मैया को जाकर के वो सभी शिकायत करेंगी. तो मन चंचल, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर. मन के मते न चालिए, डोंट फॉलो योर माइंड, क्योंकि माइंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. दैट्स इट. व्हाट इज अ माइंड? मन का देवता चंद्र. दैट्स वाई बिसाइड मी हरिचंद्रपुरी जी महाराज. देखिए, वो हमारे देवता है. ही इज कंट्रोलिंग. इसीलिए तो ऐसे महान पुरुष पास में बैठते हैं तो हमारे को सावधानी से बोलना पड़ता है. एवरीथिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ द माइंड इज द मून एंड मून इज एवरी डे वेन मून कम्स आउट और मून राइजेस नेवर इक्वल. चंद्र हमेशा एक सरीका नहीं आता है, घटता बढ़ता रहता है. वैसे मन जो है संकल्प विकल्प करता रहता है, यही मन का धर्म है, क्योंकि मन चंद्र से मिला हुआ है. एंड मून मीन्स इमोशन. इन मोशन यू आर ऑल द टाइम्स इन द मोशन इमोशन एंड इमोशन मीन्स वाटर. सो चंद्र जो है पानी का प्रतीक है और वो जल जो है पानी वाटर, वो वाटर इज चंचल मूविंग, देर आर द वेव्स. सो यू आर इन द मोशन इज द इमोशन. बट व्हाट काइंड ऑफ मोशन यू हैव, सम टाइम इज ए हॉरिकन और ए वाह फ्लड. राजा योगी अग्नि जल, जिसकी उल्टी रीत. राजा योगी अग्नि जन जिसकी उल्टी रीत. सावधान से परशुराम जी कह रहे हैं कि थोड़ी देखे प्रीत, इनसे आप ज्यादा दोस्ती मत करना. राजा भी ठीक है, कभी होते होते वो लगा देता लात. हाँ वो नेता होता है ना, नेता तो टिकट की समय तो आएंगे, हाँ बाबूजी कैसे हो, भाई साहब कैसे हो, ऐसे सब है. जीत गया उसके बाद तो हाथ नहीं मिला था क्या, टेलीफोन भी नहीं मिला था. ये बातें होती है माइंड. नाउ व्हाट इज द माइंड. सो माइंड हमारा जो है, माइंड इज लाइक ए कैमरा. He's getting all the information and transferring to the subconscious. And what is the hidden written in the subconscious brings up and gives to the consciousness, intellect, buddhi. And what is a buddhi? Buddhi ka dharm kya hai? Buddhi ka dharm hai uska जजमेंट देना. सो इंटेलेक्ट गिव्स द जजमेंट एंड माइंड ब्रिंग्स एंड गोज. देयरफॉर माइंड हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज ओनली कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग. दैट इज अ माइंड. इंटेलेक्ट इज गिविंग जजमेंट, बट विवेका दैट इज विच लीड्स अस फर्दर. सो योगा आसनास प्रणायाम चक्रास मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा बिंदु और सहस्रार, दिस आर द एट चक्रास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी. तो योग अनंत है, अनंत हरि कथा. साथ में आता है आसन, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा. तो आसन कई प्रकार के आसन कहलाते हैं. ये महाराज श्री का जो ये गद्दी बिछी हुई है इसको भी आसन ही कहते हैं. महाराज जी आपके आसन पे बैठिए, वो भी आसन है. आपका आसन कहाँ लगेगा, रात को सहन कहाँ करोगे, वो भी आसन है. और पोस्चर्स जो है वो भी आसन है. आसन की परिभाषा बहुत कुछ है, लेकिन मेडिटेशन करते समय काया स्थैर्यम मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, फिर मेडिटेशन होता है. ये गिलास पड़ी है, गिलास के अंदर पानी है, गिलास स्थिर है, पानी भी स्थिर है. गिलास इज मोशनलेस, द लिक्विड इनसाइड इज ऑल्सो मोशनलेस. But as soon as I take, glass is moving, liquid is moving. Similarly, if our body is comfortable and motionless, our mind is also steady. Sankalp Biklap के अंदर में धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आता जाता है, फिर मन मेडिटेशन हो जाता है. तो दैट्स अ लॉन्ग वे आसन. अब आपको थोड़ा सा बता दूंगा, नहीं तो स्वामी जी कहेंगे बाबा जी को माइक दिया और पता नहीं कब तक पकड़े रहेंगे. तो अब बस हो गया पूरा. धीरे से आपको कुछ बताता हूं. सभी बैठे हैं, अरे आए तो खाली बातें करने से कोई भूख थोड़ी मिलती है, मिटती है भूख, मिटती है क्या? बातों से भूख नहीं मिटती है, बात करने से पेट नहीं भरता है. टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग, टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग कंपेयर्ड विद द ग्रेन ऑफ प्रैक्टिस. तो खाली बातें करते जाओ, बातें करते जाओ, पेट नहीं भरेगा. अरे कुछ खाने को तो दे, एक भी चना दे दो तो कम वो पेट में जाएगा, तो कम से कम वो तो थोड़ा काम करेगा ही. भूखे को बताते जाओ कि हाँ श्रीखंड आ रहा है, ओहो हलवा आ रहा है, पूड़ी आ रही है, और क्या आ रहा है, अरे समोसे आ रहे हैं, लड्डू आ रहे हैं, अरे जलेबी भी बन रही है. वो भूखे के बेचारे के पेट के अंदर में आवाज हो रही है बादल की तरह, लेकिन आया क्या? कुछ नहीं आया. डपोट संघ का नाम सुना आपने? आप लोगों ने डपोट संघ का नाम सुना? महाराज जी आपने सुना?
1: नहीं अभी तक नहीं सुना.
0: सुना दूं? हाँ देखिए ये भी तो बात है. हमारे मारवाड़ में और गुजरात में हिंदुस्तान में कहते हैं डपोट संघ. कावत है कि नहीं? तो डपोट संघ की बात कर देता हूं, फिर आपको फिर प्रैक्टिकल दे दूंगा. ठीक है, एक आई एम ट्रेलिंग इन हिंदी, ओके, सो दैट आफ्टर यू विल आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम, सो टू क्रॉस आई विल मेक समथिंग कॉमेंट्री वेरी क्विकली सो यू विल अंडरस्टैंड. एक गरीब आदमी था, गरीब था, काम तो करता है लेकिन पैसे इतना नहीं मिलता है. तो उसकी पत्नी को उसने कहा कि आप ऐसा करो, यहां जो कुछ ये पैसे देता हूं काम करना, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं, भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान मेरे को बहुत कुछ पैसे दे देंगे. समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का प्रार्थना कर रहा है, ओम नमः शिवाय. भगवान शिव जी तो भोलेनाथ है ना, सबसे जल्दी वरदान कौन देता है? शिव नाम.

वो शंकर भगवान प्रकट हो गए जल के अंदर। बोलो भक्त क्या चाहिए, कि आप अगर शिव जी हैं तो आप अंतर्जामी सब कुछ जानते, मेरे को क्या कहते हो कि क्या चाहिए। प्रभु दे दीजिए, मैं लेने के लिए आया हूं और आप देने के लिए प्रकट हुए हो। अच्छा भक्त, तू मेरा भक्त है, ये शंख लेके आया हूं, ये शंख इतना चमत्कारिक है। ओहो प्रभु प्रभु प्रभु, हे दीन दयाल, क्या कहना है, आपकी माया, शंकर भगवान महादेव की माया है ये, क्या करेगा ये। अरे भगत, इस शंख की पूजा करना, गंगा जल से धो लेना या पानी से, कुएं का पानी से धो लेना, और अगरबत्ती लगाना, फूल पुष्प चढ़ाना, और फिर कहना कि हे शंकरदेव, मेरे को 1000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो तुरंत 1000 रुपये का नोट आ जाएगा। हे शंकरदेव, मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है,

आइए, चार पांच दिन के बाद में कोई गांव आया, उसके बाद दोस्त था, अच्छा दोस्त था, मित्र। भाई देखो, कभी परीक्षा जब भी होती है कि मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं। हमारे ग्रंथों में कहा है धर्म धीरज मित्र और नारी, आपत्काल प्रकहियों चारी। धर्म धीरज मित्र और नारी, आपत्काल प्रकहियों चारी। और एक मित्र की परीक्षा जब होती है, नारी की परीक्षा जब होती है, धीरज की परीक्षा जब होती है कि हम किसी न किसी संकट में हैं, तो दोस्त के वहां गया तो दोस्त का कहा, अरे भाई बहुत समय से आए, क्या बात है, कहां चले गए थे, कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान शिव मिल गए। अच्छा, शंकर दादा मर गया क्या? हाँ मर गया बापू, तो सो गया शंकर दादा ने, सो कही है लाडवा खवाड़े शंकर दादा बहू। अच्छा, अरे ऐसे ही है, देवी देवता क्या करते हैं, देंगे हैं क्या? अरे शंख दिया है कि बताओ। हे शंख भगवान, हमारे मित्र के घर के अंदर सभी मिलकर के आठ और मैं नौ, सभी के लिए अच्छा बढ़िया ताजा स्वप्न भोग थाल में पुरसा हुआ लेके भिजवा दीजिए। आ गया। अरे वाह, कपड़े मंगा दिए, आ गए। 50,000 मेरे मित्र को देना चाहता हूं, आ गए। मित्र कहता कि हाँ भाई, ये तो चमत्कारिक चीज आ गई। भोजन किया, सो गए। अब वो रात को नींद नहीं आ रही, किसको? मित्र को, कि मैं कैसे करके उस शंख को मैं ले लूं। गया दूसरे दोस्त के पास, कहीं रात को दुकान पे गया और एक इतनी साइज का एक शंख लेके आ गया। आ करके वो ठका थका था वो भगत, तो क्या किया उसने कि उसकी थैली में से वो असली शंख को तो निकाल दिया और वो जो नकली से लेके आया उसको उसके धोझोली में डाल दिया। 10-20 घर का वहां शंकर भगवान के दिया हुआ शंख को वहां टेबल पे रख करके पूजा करी। हे शंख भगवान, हमारे भाई बहन जितने सभी खड़े मेरे गांव के, सभी को पहले भोजन करा दो। कुछ नहीं। अरे शंख भगवान, कराओ ना। क्या कराए? और वो इतना निराश हो गया, वहीं से शंख को लेकर के गया समुद्र के किनारे और शंकर भगवान को कहा, ये तेरा शंख मुझे नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, अरे मेरा भगत, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, भगवान नहीं चाहता कि भगत दुखी हो। शंकर भगवान प्रकट हुए, वापस बोला, हे भगवान भगत, क्या मुझे नहीं चाहिए आपका शंख? अरे बेटा, तेरा शंख वो चुरा गया तेरा दोस्त, असली उसके पास है, नकली अंदर डाल दिया, तो मैं क्या करूं अब? क्या करे क्या, मैं दूसरा शंख देता हूं। अरे वो क्या करता है शंख? अरे उसमें तो चमत्कार डबल है बेटा, कि वो क्या है भगवान, कि मांगना 1,000 रुपया तो वो कहे 1,000 से क्या 1 करोड़ ले लो ना, अभी बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, लेके जाओ, लेकिन सावधान, देता कुछ नहीं है, वो केवल बोलता है, शंख बोलता है 1,000 रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये ले लो, 1 ड्रेस की जगह वो कहता 10 ड्रेस ले लो, कि लाओ देओ, कि क्या धक्का दे, धक्का को समझते हो, किसी को धक्का देना ना, अरे तू क्या नहीं दे रहा है, कि नहीं मेरा नाम है डपोल शंख। अब वो लेके गया वापस दोस्त के पास, गया रात्रि विश्राम किया। अरे दोस्त का कैसे आ गया इतना जल्दी? बोला कि भाई इस बार तो एक चमत्कारिक चीज और मिल गई। अरे वो क्या है? अरे मांगे 1 और दे अनेक, कि यह ऐसे कैसे हो सकता है, कि देखिए, हे शंख भगवान, आज हमारे घर के अंदर 10 किलो सोना आ जाए। तो भगवान शंख देव कहते, अच्छा भक्त, आशीर्वाद।

0: है, लेकिन 10 किलो से क्या होगा। एक टन सोना ले लेना, ले जाओ, टेंशन आ जाएगा कि बस बस बस बस इतना ही चाहता था, भगवान उसको दे दिया। अब वो कहता है कि ये शंख बढ़िया है। दूसरी दुकान पे गया लेने के लिए तो बोला कि भाई अब तो कोई शंख है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि जो वो दूसरा पुराने वाला शंख था उसको तो उसकी झोली में डाल दिया, और ये नकली शंख आया वो उसको दे दिया। अब दूसरे दिन वो तो चला गया। दोस्त ने कहा, हे शंख भगवान, मुझे 10 किलो सोना चाहिए। क्या 10 किलो के एक टन ले ले भाई? कि हाँ दीजिए। कि क्या धक्का दूं? अरे ये क्या है? कि ये क्या, मेरा तो यही काम है मुंह से बोलना, देना नहीं है। तो कहा कि तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है डपोल संख। तो तब से डपोल संख बना, खाली खुली खुली बातें करता है, वो कुछ नहीं करता। क्या साहब जी?
1: तो
0: हाँ, तो डपोल संख जो था आ गया, चला गया। तो इस प्रकार से धर्म धीरज मित्र और नारी आपतकाल प्रकहिं ओंचारी। तो जो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला है, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में आपके जोड़ा हुआ है, ये सब उस समय उनकी परीक्षा होती है, नहीं तो परीक्षा नहीं होती है। साथ ही साथ अब छोटा सा योग का अभ्यास करा देते हैं, ठीक है ना? कराऊंगा जरूर, वो मैं डपोल संख वाली बात नहीं करूंगा अब। ऑल राइट, सो वन पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ, यू स्टे एट होम, आई गो समवेयर एंड डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड गॉड विल गिव मी समथिंग, वट एवर आई विल आस्क गॉड विल गिव एंड आई विल कम एंड बैक। सो ही वेंट टू द बीच, वॉज सिटिंग नियर द ओशन एंड ही वॉज सिंगिंग शिवाज नेम, नमो शिवाय नमो शिवाय। शिवा अपियर्ड, से भक्ता, माय डिवोटी, ब्लेस यू, व्हाट यू वांट? ही सेड, आई वांट मनी, आई वांट दिस दिस, आई एम वेरी पुअर। सो भगवान सेड, ओके, आई गिव यू दिस कॉर्न्स, एंड व्हेन एवर यू वांट समथिंग टेल दिस कॉर्न्स, मेक पूजा क्लीन, फ्लावर्स, इंसेंस एक्सेट्रा, एंड देन यू विल प्रेयर एंड ही विल गिव यू एवरीथिंग, मनी, फूड, क्लॉथ, एनीथिंग। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। ही वेंट, ऑन द वे ही हैड वन फ्रेंड, ही स्टेड ओवर नाइट देयर, एंड वॉट ही टोल्ड द फ्रेंड, वॉट इज दिस? सो इन द नाइट द फ्रेंड टुक अवे द रियल कॉर्न्स एंड पुट इट द फेक कॉर्न्स, एंड देन द मैन वेंट नेक्स्ट डे, आफ्टर फ्यू डेज ही रीच हिज विलेज, एंड ही सेड, विलेज पीपल, नाउ आई हैव ए सिद्धि, परफेक्शंस, गॉड मी गेव मी एवरीथिंग, नाउ आई इन्वाइट यू ऑल फॉर द लंच, ए ब्यूटिफुल बुफेट। सर सेड, हे शंखदेव, हे लॉर्ड, प्लीज प्रोवाइड द बेस्ट फूड फॉर ऑल, एंड देयर इज नथिंग हैपन, नथिंग हैपन, बिकॉज द रियल कॉर्न्स ही टुक इट अवे। सो मैन वॉज डिसअपॉइंटेड वेरी मच, एंड ही वेंट अगेन टू द ओशन, एंड देन शिवा गेव हिम अनदर वन, एंड दैट वन इज दैट वट एवर यू आस्क टू हैव, इफ यू आस्क फॉर $1,000, ही से नो नो नो नो, टेक $5,000,000, सो यू डोंट हैव टू आस्क ऑलवेज। सो सेन, ओके, गिव मी प्लीज। ही सेड, वॉट? आई कांट गिव यू एनीथिंग, आई एम ओनली स्पीकिंग, आई एम नॉट गिविंग, ओनली प्रोमिसिंग प्रोमिसिंग, बट देर इज नथिंग। सो दैट इज इन राजस्थान, इन हिंदुस्तानी लैंग्वेज इज सम काइंड ऑफ ए जोक। सो यू नो वाई? बिकॉज पीपल आर स्लीपिंग, एंड देन स्वामी जी मेक गिव्स सच ए नाइस चुटकला। वो चुटकला क्या है? वो भोजन के अंदर चटनी, चटपटी, चटनी किया तो वो जिह्वा के अंदर में फिर स्वाद आ गया। ऑल राइट, नाउ एक्सरसाइज।

ऑलराइट, तो आप सीधा बैठे, वेरी गुड, सिट स्ट्रेट. बहुत अच्छा, वेरी गुड. नाउ स्ट्रेच योर लेग्स, बिल्कुल सावधान. आपको बिल्कुल हल्का एक्सरसाइज बता रहा हूं, बट इट इज पावरफुल. ठीक है, सो कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी पे बैठे रहे, घुटने को जोड़ दो, यस, और लेग्स लिटिल स्ट्रेट आउट, पैरों को थोड़ा लंबा कर दो. बहुत अच्छा. इनहेल एंड रेज योर हैंड्स अप एंड इंटरलॉक योर थम्स, स्ट्रेच योर हैंड्स मोर अप. तो ये साइड मसल्स स्ट्रेचिंग एंड हैंड्स डाउन, हैंड डाउन ऑन द थाइज. Once more, inhale and exhale.

Inhale and look up to the ceiling. Exhale. Now inhale and stretch your hand sideways. And above the head. Exhale in the front, hands down. One, inhale. Exhale. Yaad rakhna. बोलना मत. श्वास लीजिए एक और दो. दूसरा था एक और दो. अब अंगुलियों को कंधे पर रखिए यहां और कहनियों को ऐसे जोड़ दीजिए और इसको रोटेशन करिए. घुमाए एक, श्वास लीजिए ऊपर कंठ और श्वास छोड़िए.

और दूसरी तरफ अब इधर ऊपर से नीचे द सोल्डर ब्लेड शुड टच वेरी गुड बस हैंड्स डाउन ये दस दस बार करना है दस बार ऐसे और दस बार ऐसे अब धीरे धीरे ऊपर देखिए श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने थूली को सीना पे लगाइए टच योर एंड कम अप टच द चिन टू द चेस्ट

and inhale up. Good. 10 times. Swas lena, sir khude ke upar, aur swas chhodte hue, jalandhar band. Akashi mudra aur jalandhar band. Bahut acha, bahut hi acha. Ab pair jo lambe kiye hue hai, kursi pe baithe thoda pair aur upar lamba kar do. Aur अपने पैरों के अंगूठे अंगुलियों से इनको ऐसा पकड़ने की कोशिश करो रूमाल को. कॉन्ट्रैक्ट योर टोज एंड रिलैक्स द टोज स्लोली. कॉन्ट्रैक्ट द टोज एंड रिलैक्स. ये इसमें बहुत सर्कुलेशन हो रहा है पैरों के. किसी लोगों को एडी में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये सब चला जाएगा, दर्द भग जाएगा कहीं. एक दो, वन. अंगूठा पकड़ो, अंगुली पकड़ो, वो सब. टू, वन टू. अब एक stretch your toes towards the floor in the front of you and inhale, exhale and inhale. Isko bhi 10 bar. Iske baad pair alag alag और अंगूठों को, पैरों के अंगूठों को जोड़ दीजिए. अब इस एक सर्कल बनाइए. वन टू थ्री फोर फाइव अदर डायरेक्शन. वन two, three, four, five. बहुत अच्छा. पैर पैरों को जोड़ दीजिए और धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए. एक और धीरे धीरे आगे झुकिए, जितना झुक सके. अंगूठे पकड़िए पैरों के जितना जा सके और इनहेल, श्वास लेते हुए वापस ऊपर और हाथ दोनों नीचे. एक, श्वास लीजिए. दो, श्वास निकालिए. तीन, श्वास लीजिए ऊपर. चार, श्वास जोड़िए. अब पीछे झुकते हुए मुट्ठी बांधिए, जैसे नैया को, नाव को चलाते हैं ना. एक, दो, चार, स्लोली पांच. अब हथेलियों को ऊपर रखिए. द पाम्स फेसिंग अपवर्ड, हैंड्स नियर द नीज. जो एक, मुट्ठी बांधिए, खोलिए. दो, यस, नाव को चलाते रहिए क्योंकि अपने गणपति बापू मौर्या

0: इनको बस समुद्र के अंदर में स्नान कराना है, जल समाधि हो गया बस। हरिओम। जितना धीरे करेंगे उतना फायदा ज्यादा रहेगा। उसका एक उदाहरण बताता हूं। आप का हाथ ऐसे पकड़िए, देखिए अपने हाथ को, देखिए रेखा, देखिए कितनी सुंदर है। वाह, अरे महाराज जी इसमें तो पैसे पैसे लिखे हुए हैं उनकी रेखा में। अरे वाह, अब इसको बंद करें और खोले, मुट्ठी को बंद करें और खोले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आया। वह देखो, खाने का बढ़िया हो तब मजा आता, खाने का नहीं तो ठीक है, जंक फूड है, पेट पेट में डालते। क्वालिटी भोजन का वो है, जितना चबाओगे उतना स्वादिष्ट लगेगा, और जंक फूड वो है जितना चबाओगे तो उल्टी होने लगेगी। इसलिए मुंह कहता जल्दी पेट में डाल दे तू। तो अब ऐसा देखिए हाथ को, लुप्टिया पान सीधा बैठो हुई, हाँ ना, स्लोली क्लोज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, पकड़ दो उसको, होल्ड योर फिस्ट स्ट्रांग एंड विद राइट हैंड होल्ड द रिस्ट, ओके, टाइट द रिस्ट, हाथ पकड़ा हुआ है, स्टे लाइक दिस, एंड नाउ ओनली ओपन द पाम द लेफ्ट हैंड एंड लुक टू योर पाम एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, बट राइट हैंड इज होल्डिंग योर रिस्ट। देखिए आपका हाथ बिल्कुल लुक्स लाइक ए पेल। अब देखिए हाथ को और देखिए, अंगुलियों को देखिए, लुक योर फिंगर्स, लुक योर पाम्स, एंड नाउ रिलीज योर राइट हैंड एंड लुक टू पाम, व्हाट्स हैपनिंग? फर्क पड़ा? अब इस हाथ को और इस हाथ को देखो, कितना फर्क है भाई। अब देखते हैं, इसको भी करेंगे तो ये भी तो नाराज हो जाएगा, रात भर कहेगा कि इसी को क्यों आपने। तो इसको भी ऐसा करके मुट्ठी को बांधिए टाइट, और लेफ्ट हैंड से पकड़ देते हैं हमारे ये हाथ, इसको कलाई को पकड़ लीजिए, रिस्ट को पकड़ लीजिए, स्ट्राइट वेरी टाइट एंड ओपन द पाम एंड लुक टू योर हैंड। बहुत अच्छी रेखा है, भाग्यशाली हो, लंबी उम्र है, पैसे खूब लिखे हुए हैं, लेकिन लिखे हुए कहाँ है, उसको यहां तो लाओ। हाँ, अब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाम्स एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, एंड नाउ व्हेन आई से थ्री वन देन यू विल रिलीज, थ्री टू वन, हाथ को ढीला छोड़ दो, लाल और लाल इसी में है माल। सो देखिए अब आपके हाथ जो है कितने अच्छे लग रहे हैं। ठंडी में कार को चलाने से पहले हाथों को ऐसा ऐसा कर दीजिए तो गर्म हो जाएगा। यस, डू इट लाइक दिस, क्यों ऐसा करोगे तो क्या था, आपके हाथों के अंदर में एक चमत्कार बता देता हूँ। चमत्कार बता दे, आएगी तो महाराज जी थोड़ा बहुत चमत्कार करें, ठीक है? चमत्कार को
1: नमस्कार।
0: चलो अब थोड़ा चमत्कार देख लेते हैं। हाथों नाउ मिरेकल, नाउ यू विल हैव ए मिरेकल, यू कैन सिट स्ट्रेट इफ यू वांट, सिट इन योगा पोस्चर

वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, एनी आसन, वेर यू फील कंफर्टेबल। अब ये दोनों हाथ जो हमारे हैं, लुक बोथ पाम्स, हाँ दोनों हथेलियों के अंदर में थोड़ी रेखा अलग अलग है। अच्छा, एक तरफ तो धन आता है लेकिन दूसरी तरफ वो चला जाता है। अरे हाँ, वो तो जाना चाहिए, लक्ष्मी चंचल है। पानी तो चलता भला, पड़ा गंदेला होए। वाह भाई वाह। अब ऐसे करिए हाथों को। अब आपके अंगुलियों के ऑन योर टिप ऑफ द फिंगर्स समथिंग इज टिकलिंग, जस्ट लुक लाइक दैट। नाउ आई वॉन्ट दैट यू हैव 1000 times मोर tickling or like in needles going through your palms, that we should fold your hands. Fold your hands. And now rub the palms

वेरी गुड. अब ऐसे 1 इंच दूर रखो. अब ऐसा करिए, नीडल मूव होगी नहीं कि नहीं, ऐसा कर रहे हो तो भी कि जैसे सुई नीचे लगी हुई है. और ऐसा करिए धीरे धीरे. वो प्रेशर आता ना, मैग्नेट. और अब क्लोज योर फिस्ट, हैंड्स डाउन एंड कम अगेन अप एंड ओपन पाम. देयर इज नो मैग्नेट, वेज गॉन. सो दिस मीन्स हमारे हाथों का ठंडी वगैरह होती है तो गर्म कर सकते हैं, और अंगुलियां वगैरह सभी दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज दी बेस्ट है. कहीं पेट में या कंधे पे या कहीं दर्द हो रहा है तो इस सेल्फ हीलिंग पावर करके हम यहाँ रख दें तो हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा. या कहीं दर्द है तो वो हम हमारी एनर्जी को वापस वहां भेजते हैं. तो इनहेल एंड यू गो इन विद द एनर्जी, एक्सहेल and take all the toxins and the pain out. Self healing. To bas aaj to itna hi. That's all for today. Session is over. It was 1.5 hours.